हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 6वीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की।

0: इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का कथन है, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। भक्ति संगीत।

के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 232। संगीत सरिता में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंटारा। आज सुनिएगा 10वीं कड़ी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे की, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा। संगीतकार राहुल देव।

Steve Barman Parr. सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत होगी गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है उन दिनों की बात है, लेखक और वचन स्वर अरुण शेखर का।

दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो। मैटिनी शो के अंतर्गत चित्र भारती प्रसारित की जाएगी। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक कटीला रास्ता, इसका पहला भाग। मूल तमिल लेखक नित्यमूर्ति, हिंदी अनुवादक ए शौर्य राजन, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज शाम 4 बजे। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत वायलिन का विहंगम संसार, 10वीं कड़ी। जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनवाई जाएगी शाम 7 बजे। 7:45 पर जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई की। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार आर डी बर्मन पर केंद्रित। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे चित्रपट संगीत और मैटिनी शो। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दसवीं और अंतिम कड़ी,
1: वायोलिन का विहंगम संसार। श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में हम स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का और जाने माने वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित जी, आज इस अंतिम कड़ी में आपके गुरुजी श्रद्धेय पंडित राम नारायण जी के बारे में बात करेंगे।
2: बिल्कुल।
1: और चर्चा करेंगे राग भैरवी की भी।
2: जयंत जी, आपको बताना चाहता हूँ कि भैरवी कई शेड्स में मेरे गुरुजी ने बजाई है।
1: जी जी।
2: उसके विविध रूपों का प्रकटीकरण उनके वाद्य में हुआ।
1: हाँ।
2: उनका वाद्य तो आप जानते ही, सारंगी है, और सारंगी गज के वाद्यों में मदर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: मतलब वायलिन, चेलो, ये सब गज के वाद्य हैं। इसरा

0: आज वगैरह।
1: बट
0: सारंगी इज ऑन टॉप ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट
1: जी।
0: और पंडित रामनारायण के बारे में मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि चूंकि मैं उनका शिष्य हूं इसलिए उनको टॉप पे रख रहा हूं, लेकिन दुनिया उनको टॉप मानती है। तो उन्होंने भैरवी बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग शेड्स में बजाई है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूं उनकी भैरवी से पहले एक और वाक्य का कि जो श्रोताओं को भी शायद उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करेगा। वो वाक्य ये है कि पंडित जी जब फिल्मों में बजाते थे
1: जी,
0: तो वो फिल्म थी जो दो हंसों का जोड़ा गंगा जमुना, उस फिल्म की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चल रहा था तो नौशाद साहब को लगा कि ये दो हंसों का जोड़ा उन्होंने भैरवी में बनाई
1: जी,
0: ये गीत।
1: हाँ जी।
0: तो ये किसका लिखा हुआ गीत है?
1: वकील बदायूनी साहब का।
0: अच्छा,
1: गाना है।
0: देखिए, एक से एक उम्दा लेखक थे उस समय, एक से एक उम्दा संगीतज्ञ संगीतकार थे
1: जी,
0: और उनके साथ जो टीम बनती थी उसमें क्या क्या लोगों ने बजाया। पंडित रामनारायण, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा और भी पहले अली अकबर खान साहब वगैरह, उन्होंने भी बजाया फिल्मों में
1: जी,
0: पंडित रविशंकर ने भी बजाया। तो क्या कैटेगरी के लोग थे उस समय जिन्होंने फिल्मों में कंट्रीब्यूट किया म्यूजिक, और इस वजह से फिल्म म्यूजिक जो है बहुत रिच हुआ, उसमें बड़ी संपन्नता आई।
1: जी हाँ जी।
0: एक जिक्र करना चाहता हूँ मैं कि किस तरह से पुराने म्यूजिक डायरेक्टर अपने उस्ताद संगीतज्ञों का उपयोग करते थे।
1: जी,
0: मेरे गुरुजी ने बताया कि दो हंसों का जोड़ा जो फिल्म गंगा जमुना का जो गीत है,
1: हाँ,
0: उन्होंने नौशाद साहब ने बनाया, तो गुरुजी को कहा कि आप आ जाइए, ये गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। गुरुजी अपनी सारंगी लेके पहुंचे और उन नौशाद साहब के घर पे पहुंचे तो उन्होंने गीत सुनाया और उन्होंने कहा पंडित जी इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ सारंगी के पीसेस रिकॉर्ड हो जाएं।
1: हाँ।
0: तो गुरुजी ने कहा कि आप बताइए मैं क्या बजाऊं, नोटेशन बता दीजिए
1: जी।
0: तो देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। नौशाद साहब ने कहा कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, सारंगी के आप विद्वान हैं और भैरवी का गाना है लता जी ने गाया है, और अब इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु जी ने बैठ के कुछ घंटे भर में वो तीन चार जो भी पीसेस हैं बनाए, एक से एक उम्दा अद्भुत पीसेस हैं वो
1: बेशक,
0: और रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड हुए। देखिए क्या शऊर था लोगों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस था।
1: हाँ,
0: उस जमाने में कि वो उस व्यक्ति को पहचानते थे कि ये क्या काबिलियत रखते हैं, आज के मामले में ऐसा संभव नहीं है। वो जमाने में गुलाम अली खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, आमिर खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, डीवी पलुस्कर साहब ने कंट्रीब्यूट किया, किन किन लोगों ने फिल्म म्यूजिक में हिस्सा लिया, वो लुप्त हो गया, पूरी परंपरा लुप्त हो गई। और ये जो गीत आज जब भी बजता है दो हंसों का जोड़ा, तो बरबस ही कोई भी व्यक्ति पानी की दुकान पे हो, चाय की दुकान में हो, बाजार में हो, खड़ा खड़ा जब तक पूरा नहीं सुन लेता तब तक आगे नहीं हिलता। तो ये फिल्म संगीत का कैटेगरी और एक स्टेटस था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो स्टेटस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स के भी थे। नौशाद साहब गुरुजी को छोड़ने आए कार तक और गेट खोल के उनको कार में बिठाया, और ये होता नहीं आजकल। तो ये संपन्नता जो संगीत की है वो इस पीढ़ी के साथ लगभग चली गई, जिसका मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, और सब हम सब लोग उसको मिस करेंगे। मेरा कहना है कि इस गीत के अलावा गुरुजी का एक रिकॉर्ड अगर आप भैरवी का लग सके
1: जी,
0: तो श्रोताओं को जरूर सुना दीजिए
1: अवश्य।

0: पंडित रामनारायण की बजाय सारंगी पर यह थी राग भैरवी की झलक। और अब राग भैरवी पर आधारित पंडित जी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वही गाना, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए जी।
1: वाह वाह।
0: फिल्म का नाम है गंगा जमुना।
1: बिल्कुल।

0: भैरवी राग पर आधारित फिल्म गंगा जमुना का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार, ये श्रृंखला आज यहाँ समाप्त हो रही है। हम विविध भारती परिवार की ओर से, सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों की ओर से वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का और श्रोताओं का, जिन्होंने हमारे साथ रह के ये पूरी श्रृंखला सुनी, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस एल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और 27 जून का ये दिन बहुत ही खास दिन होता है संगीत के दीवानों के लिए, एक संगीतकार की याद का दिन। 1939 था वो साल जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल, लेकिन आगे चलकर वो पुकारने के नाम से कहलाया पंचम और उसके बाद फिल्म संगीत का एक अनमोल सितारा बन गया।

साल 1961 था। महमूद ने एक फिल्म बनाई छोटे नवाब, और इस फिल्म के जरिए आए म्यूजिक की दुनिया के छोटे नवाब यानी राहुल देव बर्मन। बाकायदा डेब्यू हुआ और लता मंगेशकर के साथ हुआ। शैलेंद्र के बोलते घर आजा, घिर आए बदरा सांवरिया, और जरा सोचिए कि एक ऐसा आगाज हुआ जिसकी प्रोग्रेशन का अंदाजा नहीं था। यानी ये यात्रा अपने उन्नत रास्तों पर पहुंचकर कहां चली जाएगी, ये लोगों को अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआती संगीत था। आर डी बर्मन ने एक एक कदम आगे बढ़ाए। उनके कुछ शुरुआती गाने हैं आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। फिल्म का नाम है भूत बंगला, फिर से लता मंगेशकर की आवाज है, इस बार बोल हसरत जयपुरी के।

1965 में आई फिल्म भूत बंगला का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे आरडी बर्मन की तर्ज थी। हसरत जयपुरी आरडी बर्मन अनयूजुअल पेयर, दोनों ने संभवतः यही एक फिल्म एक साथ की थी। और आपको बता दें कि भूत बंगला महमूद के निर्देशन वाली फिल्म थी और बहुत ही अनमोल फिल्म और बहुत ही अनयूजुअल अलग तरह का विलक्षण शानदार संगीत है। एक एक गाना अपने आप में कमाल। पंचम पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। और अब तीसरा कौन फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और आरडी बर्मन का संगीत। संभवतः यहां से आनंद बख्शी के साथ राहुल देव बर्मन की एक यात्रा शुरू होती है और उसके बाद ये यात्रा आने वाले कई दशकों तक चलती है। और आते हैं कुछ बेमिसाल गाने।

तीसरा कौन फिल्म का ये गाना? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का था। 1965 में ये फिल्म आई थी। आज बोले बिसरे गीत कार्यक्रम में कुछ बातें पंचम की, और अभी एक छोटा सा अंतराल।

फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में था। कार्यक्रम की अगली पेशकश है ये आवाज मोहम्मद रफी की, साथ में मन्ना डे, आनंद बख्शी की बोल, आरडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम चंदन।

जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, ये गीत आपने सुना। और ये आज के बोले बिसरे गीत कार्यक्रम का आखिरी गाना था। आपको बता दें कि बहारों के सपने फिल्म का ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। अब आज का बोले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा
2: तम को रेवदर

हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज इस अंक के साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। पहले सुनते हैं आज का सुविचार। स्वामी विवेकानंद का कथन है, युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में नज़र डालते हैं आज का इतिहास पर। श्रोताओं, आज 27 जून है। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 27 जून वर्ष का 178वां लीप वर्ष में 169वां दिन है। साल में अभी और 187 दिन शेष हैं। सत्ताईस जून की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालें तो आज ही के दिन 2002 को G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुई थी, और आज ही के दिन 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द किया गया था, और आज ही के दिन 2005 में ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। भारत व पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया आज ही के दिन 2008 को, और आज ही के दिन 2015 को भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे अथवा सत्यजीत राय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र का फैसला किया गया। श्रोताओं, अब हम नजर डालते हैं 27 जून को जन्मे व्यक्तियों पर। इसमें पहला नाम आ रहा है 1919 को जन्मे अमला शंकर का, जो मशहूर भारतीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। उनका जन्म आज ही के दिन 1919 को हुआ था, अमला शंकर का। और आज ही के दिन तमिल भाषा के साहित्यकार अकिलन का जन्म हुआ था 1922 को। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे आरडी प्रधान का जन्म आज ही के दिन है, 1928 को इनका जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव वर्मन साहब का जन्म है आज ही के दिन 1939 में। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक रहे नितिन मुकेश का भी जन्म आज ही के दिन 1950 को हुआ था, और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1955 को पूर्णिमा वर्मन का, जो भारतीय पत्रकार रही। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1955 को हुआ था, और जन्म हुआ था पीटी उषा का, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं पीटी उषा। इनका जन्म आज ही के दिन 1964 को हुआ था। अब हम नजर डालेंगे निधन हुए व्यक्तियों पर। उन व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए। इसमें नाम आ रहा है सैम मानेकशा का, जो आज ही के दिन 2008 को इस दुनिया से अलविदा कह गए, जो कि भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध का विजय प्राप्त किया था। सैम मानेकशा का जन्म मृत्यु आज ही के दिन 2008 को हुआ था, और आज ही के दिन मृत्यु हुई थी रणजीत सिंह का, जो कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रहे। रणजीत सिंह का निधन आज ही के दिन 1839 को हुई थी। श्रोताओं, आज हम किसी भी प्रकार की कोई अवसर एवं उत्सव नहीं मना रहे हैं।

अभी आपने आज के इतिहास के बारे में जाना, अब हम सुनते हैं इसी कड़ी में एक खूबसूरत सा गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। SH बिहारी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने धुनों से इस गीत को सजाया है और फिल्म है औलाद।

अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म था औलाद।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा कुटीर ज्योति बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रूफ टॉप सोलर योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ साथ बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित की जा रही है। जिले के भूधारकों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। अब जमाबंदी के किसी भी संशोधन, बदलाव या उद्यतन

प्रोत्साहन योजना जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा कुटीर ज्योति बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रूफ टॉप सोलर योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ साथ बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित की जा रही है। जिले के भू धारकों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। अब जमाबंदी के किसी भी संशोधन, बदलाव या अद्यतन की जानकारी सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। विभाग का मकसद भूमि अभिलेख से ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित बनाना है। कैमूर जिले के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षात्कार विभाग भारत सरकार की वेबसाइट पर आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्व नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड में सूखे और लू से जूझ रहे अधौड़ा के पठारी इलाकों के किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कैमूर अधौड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत किसान गोष्ठी हुई। मौसम अनुकूल धान बीज वितरण कार्यक्रम भी हुआ। गोष्ठी में 9 गांवों के 250 किसान जुटे। अगुवाई वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सदानंद राय ने की। मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार भी मौजूद रहे। गोष्ठी में अधौरा, चैनपुर, पिपरा, पिपरी, सिकरवार, डुमरावा, सरेनार, रैता, छपरा और किसानों ने हिस्सा लिया। कैमूर जिले में गुंजी या यली या हुसैन की सदाएं। शुक्रवार को कैमूर जिले में या यली या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। क्षेत्र में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद ताजिया का जुलूस निकाला गया।

नोखा प्रखंड में मुहर्रम का पर्व शनिवार को अकीदत शांति भाईचारे के माहौल में मनाया गया। अलग अलग इमामबाड़ों से ताजिया जुलूस निकले। बड़ी संख्या में अकीदत मंद शामिल हुए। जुलूस तय मार्ग से करबला पहुंचे। धार्मिक परंपरा के अनुसार ताजियों का सुपुर्दे खास किया गया। जुलूस में या हुसैन के नारे लगे। लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया, श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने पारंपरिक लाठी तलवार से करतब दिखाया।

श्री संत लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में प्रवचन देते हुए सृष्टि के प्रारंभ पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में इस संपूर्ण जगत में केवल श्रीमन नारायण ही थे। उस समय न कोई स्त्री थी और न ही कोई पुरुष। उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने अपने संकल्प मानसिक शक्ति से सृष्टि की रचना की थी। श्रोताओं, अब इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक और खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत राजेश रोशन का है। फिल्म है दिल तुझको दिया।

मंगेशकर को दिल तुझको दिया फिल्म से। श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सभी अखबारों ने अलग अलग खबरें को प्राथमिकता देते हुए अपने अपने तरीके से लिखा है और प्रमुखता से छापा है सचित्र। प्रभात खबर लिखता है, मानसून ने बढ़ाई चिंता, 36 जिलों में सामान्य से भी कम हुई बारिश। इस खबर को सचित्र छापा है प्रभात खबर ने और लिखता है, बिहार में मानसून ने एक बार फिर अपनी आसमान चाल में चिंता बढ़ा दी है। एक ओर उत्तर बिहार, तराई और सीमांचल के जिले में लगातार बारिश से नदियां उफान पे हैं, वहीं दूसरी ओर दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों अब भी पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग केंद्र पटना के आंकड़े बताते हैं कि 26 जून तक बिहार के 36 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इसमें 18 जिलों में 50% से अधिक बारिश की कमी है। प्रभात खबर के हवाले से यह खबर है, राम मंदिर के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए अपने तरीके से लिखा है, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, शिक्षा विभाग ने 885 करोड़ रुपए के खरीद घोटालों की जांच में भी घोटाला। इस खबर को प्राथमिकता दिया है दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर लिखता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 885 करोड़ रुपए की खरीद योजना की जांच अब खुद सवालों के घेरे में है। जिस जांच को राज्य भर में संभावित अनियमितताओं की पड़ताल का आधार बनाना था, उसी के निष्कर्ष बाद में बदल गए। दैनिक भास्कर के मिले दस्तावेज बताते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बेंच, डेस्क, थाली, बैग और बैरिंग आपूर्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, चंपत और मिश्र का इस्तीफा, 8 गिरफ्तार, 79.85 लाख रुपए जब्त। हिंदुस्तान के हवाले से खबर है, सूबे में श्रेष्ठ प्रणाली आधारित नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। बिहार में नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। यह अधिनियम दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित होगा। इसके लिए 15 राज्यों से अधिनियमों का अध्ययन कर रही उन उत्कृष्ट और उपयुक्त व्यवस्थाओं को समाहित करते हुए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद 6 सैनिकों में एक बिहार का लाल, इस खबर को प्राथमिकता दिया है और सचित्र छापा है हवलदार सुनील कुमार सिंह का चित्र। लिखता है, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जवानों में एक पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के हुए नुकसान के पहली औपचारिक आधिकारिक खुलासे से स्पष्ट हुआ है कि पिछले साल इस अधिनियम के दौरान देश के लिए जान देने वाले में से सेना और वायुसेना के जवान शामिल थे। शहीद में बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत के नरबतपुर मोहल्ले में रहने वाले हवलदार सुनील सिंह भी शामिल थे। दैनिक जागरण ने भी विश्वविद्यालय की खबर को प्राथमिकता देते हुए सचित्र छापा है। लिखता है, विश्वविद्यालय के संचालन को नया कानून, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार लाने की सरकार की पहल तेज हो गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रभावी तरीके से संचालन एवं नियंत्रण के लिए नया कानून लागू होगा। इन्हीं खबरों के साथ अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त विनोद को कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात थोड़ी देर में।

0: ही अच्छे अच्छे गीत लेकर आपके पास आएंगी हमारी दोस्त दीक्षा। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गयी। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार

0: राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो

0: ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन।

0: जन अमिस्ताद। सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता समाचार प्रभात सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं, सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है कुदरत का कानून फिल्म से, मोहम्मद अजीज ने इसे गाया है। फारूक कैशर के लिखे गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और फिल्म है कुदरत का कानून।

कुदरत का कानून फिल्म के इसी गीत के साथ देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:20 हुए हैं। सुनते हैं आप श्रोताओं के भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम के पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। इस गीत के लिए हमारे पास पत्र आया है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। ये श्रोता है रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबों ने। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निगहत परिन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा परवीन और बेबी आलिशा। ये श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गाने के ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं नरहन एस्टेट से नूतन मिश्रा, सुमन मिश्रा, अमृता, अनुपम, आराध्या, विनीता मिश्रा और स्नेह लता जैन। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों के आवाजों में, फिल्म मिलन से।

ये श्रोता हैं थाना मुड़गढ़ हरनोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। इसी गाने के ख्वाहिशमंद ये श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ महेर नगर उमर खेणर महाराष्ट्र से अभिजीत गुणाकर, राही श्रीमती सरिता गुणाकर, प्रिंस एकांश गुणाकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गुणाकर, प्रणीता गुणाकर, अर्जुन गुणाकर और टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश गुणाकर, सुमित गुणाकर, कुमारी धोनी गुणाकर और परी। तो लीजिए अपने सुनिए मनपसंद का यह गीत अपने फरमाइश पे फिल्म क्रांति से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों ने। संतोष आनंद के लिखे गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। फिल्म है क्रांति।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश आशा भोसले और साथियों की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनना चाहे आप सब उन्हें। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, ये श्रोता हैं। फुटानी चौक नरहन एस्टेट से भाई फटफटिया जा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मुरवा से आप हैं भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आकर आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिकी, रिकी नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र, जयंत कुमार बैरागी। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बैचू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख। कलेर बिहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परीन, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिया नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत कार्यक्रम के आखिर में, फिल्म शिकार से।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के साथ सारम केंद्र का प्रसारण कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अधिनियम दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित होगा। इसके लिए 15 राज्यों के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का अध्ययन कर उनकी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए कुलाधिपति पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बाढ़, कटाव, जल जमाव, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत से संबंधित निर्माण कार्यों में इस योजना के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम होने के साथ ही स्थानीय श्रमिकों को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। मधुबनी और दरभंगा जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर के संबंध में असेसमेंट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब विभाग CDP 2021 के तहत चयन कर कार्य शुरू करेगा। श्री सिन्हा ने बताया कि यह देश का 5वां क्लस्टर होगा। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी के लगभग 20,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं केला, आम, लीची और मखाना आधारित मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाने के साथ ही बागवानी विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश में पीने के पानी के लिए अब सतही जल को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भूमि जल पर निर्भरता और उसकी निकासी कम करने के उद्देश्य से यह फैसला किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के पहले चरण में दक्षिण पूर्व बिहार के 8 जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कैमूर को शामिल किया गया है। इन जिलों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत कम है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सिवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित होंगी। प्रदेश के 211 नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी विभागीय पत्र को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि इससे पहले इन राजकीय महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के लिए UGC के

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को

मापदंडों के अनुरूप नेट, जेआरएफ और पीएचडी की अर्हता प्राप्त सरकारी शिक्षकों की सूची प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला किया है। विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को आवेदन न देकर प्रेस वार्ता करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है। श्री सिंह को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में मनोरोग विभाग में प्राध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अगले 3 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अवधि में 8 जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। वहीं शेष हिस्सों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भभुआ और डेहरी को छोड़कर ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस अवधि में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण

0: आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहेंगे। इस बीच कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान और अधिसूचना हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया को राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने और अनुशंसा करने में सहायता के लिए विकसित किया गया है। मानक परिचालन प्रक्रिया सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, क्षेत्र आधारित आकलन और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देती है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने खाजे डीह गांव के पास से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक देशी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। मुंगेर जिले के उर्दू चौक के पास वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 269 लीटर विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया है। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हरा दिया। भारत पर आयरलैंड की यह पहली जीत है। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 19 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। गौरतलब है कि इस मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह नहीं मिल पाई। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 मैच कल खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सूबे में श्रेष्ठ प्रणाली आधारित नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, 5 से कम सदस्य होने पर अंत्योदय अन्न योजना के लिए घट सकता है अनाज आवंटन। प्रभात खबर ने मौसम की खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, 36 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश, 2025 की तुलना में बदला मॉनसून का रुख। दैनिक भास्कर लिखता है, वेनेजुएला में भूकंप से 589 मौतें, 50,000 अब भी लापता। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, बचाव के लिए आज का दिन अहम। राष्ट्रीय सागर ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर लिखा है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के जिलों में बड़ा फेरबदल, 30 उपाधीक्षकों का हुआ तबादला। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी याद।

0: नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आप आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त जानकारी ली। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे और आज के फनकार कार्यक्रम विविध भारती से सुनेंगे सुबह 9:30 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा सुबह के 10:00 और कार्यक्रम विकास के सोपान सुनेंगे सुबह 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी सुनेंगे 10:30 पर और भोजपुरी एल्बम संघ रस कार्यक्रम रसधार सुबह 10:45 पर। कार्यक्रम लोक माधुरी का समय होगा पूर्वाहन के 11:00 से और 11:25 पर विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग सुन पाएंगे। शाम 5:10 पर पुनः आप सबों की सभा में लौटेंगे कार्यक्रम वंदन के साथ। आज हम सुनेंगे शाम 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी। भोजपुरी लोकगीत सुन पाएंगे शाम 6:00 से और भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा शाम 6:05 पर। किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे शाम 6:10 पर और शाम 6:40 पर सुन पाएंगे कार्यक्रम सांझ गीत। इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। शाम 7:15 पर गुड इवनिंग रोहतास सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम सुन पाएंगे और पुनः चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र जहां से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल शाम 7:25 पर।

हेलो मनपसंद फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 7:50 पर। श्रोताओं, मैं आपके बताते चलें कि इस कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग का समय है हर बुधवार प्रातः 11 से 12 बजे दोपहर तक का। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनेंगे शाम 8 बजे से, और हेलो मनपसंद फॉर्मिस फरमाइशी कार्यक्रम का भाग 2 सुन पाएंगे शाम 8:15 पर। कार्यक्रम के सूत्रधार विनोद कुमार सिंह, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का समय होगा। रात्रि 9 बजे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज हम महफिल को सजाएंगे गजलों से और रात्रि 9:15 पर, और कार्यक्रम आज के फनकार सुन पाएंगे विविध भारती से रात्रि 9:30 पर। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने का समय होगा रात्रि 10:30 पर। अगले दिन के कार्यक्रम और मौसम पूर्वानुमान लगाएंगे रात्रि 10:55 पर। रोजाना की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 11 बजे से। सभा का समापन 11:10 पर। अभी आपने जाना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम गीत मालिका की पहली पेशकश आशा भोसले और पंकज उदास की आवाज़ में। मुमताज रशीद ने इस गीत को लिखा है, पंकज उदास ने संगीत दिया है, और फिल्म है आधा राम आधा रावण।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म बीबी हो तो ऐसी से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने इस गीत को गाया है। समीर के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। फिल्म है बीबी हो तो ऐसी।

कार्यक्रम में सुनते हैं जॉली मुखर्जी और सपना मुखर्जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत। इंदिवर के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म है दयावान।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोल हैं, अनु मल्लिक का संगीत है, फिल्म है गंगा जमुना सरस्वती।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से आज के फनकार थोड़ी देर में।

जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के

जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया, और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

0: कर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ रुक जाओ, यह धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं।

किस्मत ने धोखा दे दिया। ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन, और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम, जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया, और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर.डी. बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई। हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में

0: ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रखे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
3: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो

0: लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबू वर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबू वर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों से पहले हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम विकास के सोपान।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला नेकरा के बारे में। सासाराम नगर निगम कार्यालय से उत्तर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम आरा रोड से पश्चिम थोड़ी दूरी पर स्थित है नेकरा। पहले यह उचितपुर ग्राम पंचायत का भाग था, लेकिन सासाराम नगर निगम बनने के बाद यह नगर निगम के वार्ड नंबर 2 का भाग हो गया है। पहले तो यह एक सामान्य बस्ती थी, लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद काफी लोग नेकरा और उसके आसपास गृह निर्माण कर रहे हैं, जिससे इसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। नेकरा में एक प्राथमिक विद्यालय भी है जहां मोहल्ला के बच्चे पढ़ते हैं। नेकरा में गली नाली पक्की दिखाई पड़ी, बिजली के पोल पर कवर्ड तार देखने को मिला। श्रोताओं, ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला नेकरा की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहां विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मोहल्ला वासियों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहां रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया नेकरा के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला नेकरा में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम के वार्ड नंबर 2 स्थित मोहल्ला नेकरा में उपस्थित हैं और यहां पर मोहल्ला नेकरा के कुछ लोग हैं। यहां पर विकास की क्या स्थिति है, सरकारी योजनाओं का लाभ यहां लोगों को कितना मिल पा रहा है, आज इसी विषय पर बातें होंगी और जानेंगे, तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
1: अफ्ताब आलम।
0: क्या करते हैं आप?
1: हम तो नीचे बिल्डिंग काम करते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए नेकरा की क्या अभी स्थिति है?
1: भैया, पानी नली का बहुत हम लोग का दिक्कत है, दूसरा खेत वाला में जा रहा है और रोज बो रहा है, 10 बार हम लोग कंप्लेन किए हैं, किसी को सुनवाई नहीं दे रहा है हम लोग में।
0: अच्छा, नाली के पानी का निकास नहीं है?
1: नहीं है।
0: अभी कहाँ गिरता है पानी?
1: अभी गोड़ाई में है, खेत में जा रहा है और दूसरे खेत में मना कर रहा है, अगर बंद कर देगा तो कहाँ पानी जाएगा नली का?
0: ये बिल्कुल, ये तो समस्या है ही। अच्छा, ये बताइए मोहल्ला की गली की क्या स्थिति है?
1: अभी तो हम लोग गली में तो ठीक है, थोड़ा सा इधर बाकी है।
0: अच्छा, नाली हम देख रहे हैं कुछ पक्की बनी हुई है, क्या हर जगह पक्की है नाली?
1: नाली पक्की है,
0: नाली गली ठीक है, नाली के पानी का निकास,
1: पानी के निकास की दिक्कत है इधर जाने के लिए।
0: अच्छा, पीने वाला पानी आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं?
1: नहीं मिल रहा है पानी,
0: हर घर नल जल योजना जो
1: नहीं मिल रहा है,
0: चालू ही नहीं है,
1: महीना में एक दिन दो दिन चालू हो रहा है पानी, फिर वही आधा घर जाता है आधा घर नहीं जाता है,
0: मतलब पानी सप्लाई ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था है?
1: व्यवस्था है, लड़का जाता है और पढ़ता है लिखता है सब,
0: मतलब सरकारी विद्यालय है ना?
1: हाँ, विद्यालय है।
0: आंगनबाड़ी?
1: आंगनबाड़ी भी है।
0: कैसी स्थिति है, व्यवस्था कैसी?

0: क्या?
1: अच्छा ये,
0: अच्छा ये बताइए, आपको सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं?
1: नहीं, हमें तो अभी लाभ नहीं मिला है।
0: राशन कार्ड है आपका?
1: नहीं, मेरा तो राशन कार्ड नहीं है।
0: क्यों बनवाए नहीं है कि आप है नहीं उसके पात्र?
1: बनवाने के लिए बोल रहे थे, वो बोला है तो अभी बनाएंगे, अभी एक डेढ़ महीना के बाद।
0: अच्छा अभी बना नहीं है। अच्छा बताइए, घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं जिन्हें वृद्ध पेंशन योजना का लाभ मिलता हो?
1: नहीं, हम लोग घर में नहीं है।
0: कॉलोनी के भी आप पात्र हैं जो सरकारी कॉलोनी आवास मिलता है?
1: नहीं, हम लोग कॉलोनी भी नहीं है।
0: मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ आप नहीं ले रहे?
1: नहीं ले रहे।
0: जी धन्यवाद, आइए बुजुर्ग से मिलते हैं, उनका परिचय जानते। क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम है त्रिलोकी प्रसाद।
0: ये नेकरा के रहने वाले हैं ना? अच्छा ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी आपके नेकरा मोहल्ला की?
2: स्थिति हम तो देखा था कि नाली के पानी की व्यवस्था नहीं है।
0: जी नाली के पानी की व्यवस्था नहीं। और गली वगैरह तो सही है?
2: अब तो है नहीं, तो हम नहीं देखा।
0: अच्छा ये बताइए कि बिजली यहाँ आप लोगों को मिलती है भरपूर?
2: ना, बिजली तो बहुत कम मिलेगा।
0: कोई दिक्कत हो जाती है क्या?
2: दिक्कत का कटा था रातों भर कट जाता है।
0: बिजली में अभी सरकार कुछ छूट दे रही है, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं?
2: वो तो ठीक है,
0: तो लाभ मिल रहा है। आपकी उम्र कितनी है?
2: हमारे 70 हो गई।
0: अच्छा ये बताइए, जो सरकार की योजनाएं हैं कुछ उसका लाभ आप ले रहे हैं? जैसे वृद्धा पेंशन योजना, बूढ़ा पेंशन जिसको कहते हैं आप लोग?
2: हाँ
0: मिल रहा है।
2: हाँ।
0: घर में खेती वाली जमीन भी है?
2: ना, घर में हमारे को कटा।
0: आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं कभी?
2: घर दुआर एक दो बार लड़का बसन चार गो और जमीन है।
0: कॉलोनी मिली थी पहले?
2: ना, हमारा कॉलोनी नहीं
0: मिली। कॉलोनी नहीं मिली। राशन कार्ड है कि नहीं आपका?
2: हाँ बा,
0: तो उसका लाभ मिलता है ना?
2: हाँ राशन मिल जाएगा।
0: राशन कार्ड वालों को आयुष्मान कार्ड भी बनता है जिसमें 5 लाख तक इलाज परिवार को मिलता है? बनवाए हैं?
2: ना, होने के बाद
0: बनवा लेना चाहिए। पीने वाला पानी आप लोगों को मिल रहा है?
2: नहीं, पहुँचना कहाँ, कहते बनी के बंद रहा
0: है। पर बगल में देख रहे हैं लेकिन बंद रहता है।
2: सब टंकी बंद होने बाने 3 गो बका था।
0: अच्छा नगर निगम की अभी सुविधा आप लोगों को मिल रही कि नहीं? सफाई है, झाड़ू लगना और भी जो सुविधा
2: है। तो हम देखते हैं कि झाड़ू लगते बा, हम तो देखा जो कहे
0: नाली वाली भी साफ हो रहा है ना?
2: हाँ नाली भी साफ होता है।
0: जी धन्यवाद, इधर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। जी आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम जमील अंसारी।
0: आपकी उम्र कितनी है?
3: ये 65 की उम्र।
0: पहले भी आप देखे होंगे नेकरा की स्थिति और आज देख रहे हैं, क्या कुछ लगता है बदलाव हुआ है?
3: बदलाव भइल बा, नली गली कुल बन गइल बा, रोड रोड सब हो गइल बा। अब पानी की थोड़ा दिक्कत बा।
0: ये पानी निकास वाली?
3: निकास वाला नहीं है, पानी
0: पीने वाला पानी।
3: पानी पानी
0: पीने वाला पानी तो यही टंकी है लेकिन ये इसका सप्लाई नहीं दे पा।
3: सप्लाई नहीं हो,
0: क्या कारण है?
3: कोई देखभाल करे वाला नहीं है।
0: अच्छा समय से चालू नहीं होता है ना? मतलब ठीक है ना, चालू होता है?
3: ठीक बा, मगर चालू करे वाला समय से नहीं, यही से दिक्कत हो जाता है।
0: नाली के पानी के निकास के लिए भी लोग बताएं, क्या कुछ समस्या है यहाँ पर?
3: पानी के निकास के लिए तो गोड़ही में जाला पानी,
0: लोग कहते हैं कि खेत में पहुँच जाता है।
3: वो तो बरसात में जब ज्यादा पानी ओवर हो जाए तो फेंकिए दही ना,
0: वो तो बरसात में तो जाएगा। लेकिन ये पानी का जहाँ निकास है नाली का, वहाँ गड्ढा में कहीं है जगह?
3: हाँ क्या बाप, ताल बा ना।
0: अच्छा उसी ताल में?
3: ताल में जाता है सब पानी गाँव के। इधर से
0: खेत में नहीं गिरता है कोई?
3: अभी नहीं खेत में गिरता है, बरसात में थोड़ा बहुत फेंकता है।
0: बरसात में तो चारों तरफ पानी हो जाता है,
3: बरसात में दिक्कत थोड़ा थोड़ा, अभी दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा बिजली की क्या स्थिति रह रही है यहाँ पर?
3: बिजली तो घड़ी थोड़ा दिक्कत रहता है, कटा था 1-2 घंटा 3 घंटा कटते रहता है, गर्मी के मौसम में घड़ी आदमी परेशानी होता है, ये बात दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं?
3: स्कूल बा,
0: किस क्लास तक है?
3: 5वां तक बा।
0: अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र भी?
3: आंगनबाड़ी बा, वही में बा।
0: तो वह व्यवस्था तो अच्छी है?
3: हाँ व्यवस्था अच्छी है, लड़का पढ़े ला सर, ये सब दिक्कत नहीं है कोनो।
0: अच्छा ये बताइए कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं?
3: हम लोग का बूढ़ा पेंशन मिलता है।
0: अच्छा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ
3: बस।
0: अच्छा कभी आपको आवास योजना का लाभ मिला था जो कॉलोनी कहा जाता है?
3: सब लिखे मिला, हम कर लिखे लिखे मिला।
0: जिसका घर नहीं होता है, रहने की व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए सरकार देती है?
3: हाँ तक वो सब योजना हमने के नहीं मिलल।
0: अच्छा राशन कार्ड है आपका?
3: राशन कार्ड बा,
0: तो उसका लाभ लेते हैं ना?
3: हाँ मिले।
0: बनवाए कि नहीं आयुष्मान कार्ड?
3: नहीं आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए।
0: देखिए ये बहुत लोग बोल जा रहे हैं
3: जिसका बनवा लेंगे।
0: जी जी
3: और सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ,
0: बाकी चीज ठीक ही है?
3: सब ठीक है।
0: जी धन्यवाद, आइए एक बुजुर्ग से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
4: हमारे मुहाइदीन नाम पड़ी।
0: जी नेकरा के रहने वाले हैं?
4: हाँ नेकरे के हैं।
0: ये अब नगर निगम क्षेत्र हो गया है?
4: हाँ हाँ।
0: कौन सा वार्ड है?
4: 2 नंबर।
0: अच्छा ये बताइए क्या स्थिति है अभी आपके मोहल्ला की नेकरा की?
4: नेकरा के बहाल्ला के जो बात ठीक बा, लाइन के वही कम बेसी आवता, कबो बंद हो जाता, रातों के बेचैनी हो जाता।
0: नाली गली तो ठीक है ना यहाँ पर?
4: नाली वही हम कहते बन के एकदम बिगड़ गया है।
0: कहाँ पर नाली खराब हो गई?
4: बस महलवे में बा।
0: क्या दिक्कत हो रही है अभी?
4: दिक्कत है कि नली फट गई बा,
0: नली टूट गई,
4: जैसे हमारी जमीन पड़ती बा उ में जाके पानी बहता, कैसे
0: बनना चाहिए?
4: बने के चाहिए, बस यही बात कहते हैं।
0: मरम्मत होना चाहिए?
4: मरम्मत होना चाहिए।

0: किधर की बात कर रहे हैं आप?
1: पूर्व किनारा,
0: जमुआला के पूर्व साइड में।
1: हाँ।
0: अच्छा, इसके अलावा बताइए, बिजली में कुछ सरकार छूट दे रही है, उसका लाभ मिल रहा है 125 यूनिट?
1: देखें, पैसा जमा कर लड़का जन ने, बाकी छूट हो जरूर
0: जी। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है?
1: अरे कितना हम कहें, अब देखें,
0: 60 तो पार ही कर गए होंगे।
1: खूब बढ़िया से, उससे बेसी हो गई।
0: सरकार से जो योजनाएं चलती हैं, वृद्धा पेंशन योजना, उसका लाभ
1: मिल रहा है।
0: इसके अलावा और बताइए, कुछ और लाभ कभी लिए हैं?
1: लाभ देखें, हम कुछ नहीं उठा।
0: कॉलोनी वगैरह नहीं मिली थी?
1: ना, कुछ हमारे देखा रिकॉर्ड पर नामे नहीं।
0: अच्छा, राशन कार्ड?
1: राशन मिले
0: जी, राशन कार्ड बनवाए हैं, राशन मिलती है?
1: हाँ मिले।
0: आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं कि नहीं अभी?
1: ना, वो तो नहीं बनल,
0: बनवा लेना चाहिए उसको।
1: हाँ।
0: जी धन्यवाद। श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व सुनवाते हैं आपको एक गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, और 1963 की फिल्म है आज और कल।

0: इस गीत के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित मोहल्ला नेकरा के लोगों से, और जान रहे हैं मोहल्ला में हुए विकास कार्य तथा योजनाओं के बारे में। आइए कुछ और व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
1: मुस्लिम अंसारी।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: नेकरा का।
0: वार्ड नंबर क्या है?
1: 2 नंबर।
0: नगर निगम सासाराम। अभी बताइए कि यहाँ पर नाली और गली कैसी है?
1: अभी नाली पक्की है, फिर गली पूरा अभी बना नहीं है। 2 बार वार्ड वाला बोला बनाएंगे, फिर भी नहीं बनाया है। पानी नली में बहता है, देख लीजिए, इसका दागी भी है
0: जी। यानी कुछ क्षेत्र में अभी नाली बननी बाकी है?
1: नाली सफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। म्युनिसिपैलिटी वाला आता है, ऊपर झाड़ू लगाएगा चल जाएगा।
0: अच्छा,
1: नाली फाली कचरा उचरा नहीं निकलता है।
0: मैंने सफाई की यहाँ पर कमी आ रही है।
1: हाँ, सफाई की भी कमी है।
0: अच्छा, पेयजल आप लोगों को मिलता है कि नहीं? नल जल योजना,
1: नल में पानी नहीं आ रहा है
0: उसका।

0: सप्लाई नहीं दे
1: नहीं, नहीं दे पाता है, कभी कभी चालू होता है, दूसरे के जिम्मे कोई दे दिया है चाबी, मन करेगा चालू करेगा, मन करेगा नहीं चालू करेगा।
0: कहाँ का व्यक्ति है, मतलब
1: यही से यही का है, कहने पे चालू करता है, ऐसा बात नहीं है, कभी कभी चालू होता है अपने मन से पानी देता है।
0: बिजली की क्या स्थिति रहती है यहाँ पर?
1: बिजली की स्थिति ठीक है, लाइन रहता है, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, बिजली बिल काट के भी ले जा रहा है।
0: बिजली बिल ज्यादा आ जाता है आप लोग?
1: जी हाँ, 600 रुपए आया है बताइए एक महीना।
0: बिजली में एक बात और भी है कि बिजली में कुछ सरकार छूट दे रही है, 125 यूनिट, वो लाभ मिल रहा है?
1: वो मिल रहा है, उसका लाभ मिला है।
0: जो साधारण घर का तो हम देख रहे हैं कि बिजली बिल माफ हो जा रहा है, लेकिन 125 यूनिट से जो बढ़ेगा तो फिर तो लगेगा।
1: हाँ तो उसका तो लगेगा, उसका देने में तैयार है कोई, ठीक सही बात है।
0: अच्छा ये बताइए, सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को कुछ मिल रहा है?
1: सरकारी लाभ कुछ नहीं मिल रहा है।
0: राशन कार्ड बनवाए हैं?
1: राशन कार्ड बना है।
0: राशन समय से मिलती है कि नहीं?
1: मिल जाता है।
0: आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं?
1: हाँ वही बनवाए हैं।
0: बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि बहुत से लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों को आवास मिला है कि नहीं, जिसको कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी का लाभ यहाँ कुछ लोगों को मिला है?
1: कॉलोनी यहाँ 2-3 लोग का मिला है।
0: आप उसके पात्र हैं कि नहीं?
1: हम हमारा घर पीछे झोपड़ी है, उसका कॉलोनी भी नहीं मिला है, पहले लगाए हैं पास में।
0: अच्छा
1: अभी तक उसका पास नहीं हुआ है, पड़ती जमीन है,
0: आवेदन किए हुए हैं?
1: आवेदन लिख के दिया गया है, अभी पास नहीं हुआ है।
0: तो पहले भी कभी नहीं मिला था ना पिताजी को या
1: किसी का? घर में नहीं मिला है।
0: अच्छा घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं?
1: हाँ बूढ़े भी हैं, बाबूजी हैं,
0: उनको वृद्ध पेंशन योजना का लाभ मिलता है?
1: हाँ मिलता है, बरस आता है, यही समस्या है, बस साफ सुथरा करा दीजिए, लाली फाली के पानी उन्हें नहीं काशी हो रहा सही से, और गढ़ही के कोई हालत में सर उसको सफाई करवा कर बाहर में डालिए।
0: जी जी जी धन्यवाद। आइए एक और व्यक्ति से मिलते हैं और जानते हैं, क्या नाम है आपका?
2: गुप्तेश्वर सिंह
0: जी। गुप्तेश्वर जी नेकरा अब तो ये नगर निगम में शामिल हो गया?
2: हाँ नगर निगम में गया है।
0: तो अभी नेकरा की क्या स्थिति है, देखा जाए यहाँ नाली गली कैसा है?
2: नाली गली तो बन गया, निकासी उकासी का पानी का अभी बहुत दिक्कत है, पानी जो बह रहा है वो दूसरे के खेत में जा रहा है, पानी का निकासी नहीं है। उसके बाद में नाली कहीं कहीं अभी है जो कि अभी बनना है जो कि बहुत जरूरी है, कुछ कुछ बाकी है, कुछ बना है, अभी तो बहुत दिन से ठप हुआ है, अभी तो कोई बन नहीं रहा है, तो यही समस्या है। और
0: निकास की कुछ लोग समस्या बता रहे, कुछ लोग बताए कि नहीं निकास के लिए वो ताल है जो बगल में वहाँ पर गिरता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कास्त में जाता है किसी का।
2: ताल है, ताल तो सब भरा वरा गया है सब, तो उसको थोड़ा सा खाली उली चाहे उसका दूसरा पानी दूसरा जगह जाए, उसका पानी मैंने कहीं निकासी नहीं है ना, इधर से है
0: मतलब ताल में भी गिरता होगा तो यहीं पर सड़ता होगा।
2: हाँ वहीं पर सड़ता है, गंदगी से मैंने गंदगी
0: गांव के बगल में, इसलिए पूरा उसका दुर्गंध फैलता होगा।
2: हाँ वही बात,
0: ये समस्या है कि उसका निकास होना चाहिए।
2: हाँ निकासी हो जाता तो पानी, पहले निकासी था अब निकासी वगैरह सब बंद है।
0: अच्छा यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधा है?
2: तो स्कूल है, सरकारी है, प्राथमिक विद्यालय है, वो है चल रहा है अभी, आंगनवाड़ी भी है उसी बगल में है, आंगनवाड़ी में भी बच्चा कुछ रहता है, देखते हैं कि चल रहा है, बगल में है आंगनवाड़ी है।
0: अच्छा ये बताइए बिजली कैसी रहती है यहाँ आपके मोहल्ला में?
2: हाँ तो बिजली तो ठीक है, बिजली तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से ठीक है रहता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, बिजली में सरकार जो छूट दे रही है उसका लाभ मिल रहा है लोगों को?
2: हाँ तो मिल ही रहा है, 125 यूनिट है जो तो मिल रहा है सबको। अच्छा। उससे अब जिसका ज्यादा आएगा तो उसका
0: बिल्कुल
2: लगता होगा, हम लोगों को तो मतलब की 125 नहीं जाता है,
0: बहुत से लोगों का वो है।
2: हाँ उसमें मैंने बिजली का जो है वो ठीक है।
0: सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोगों को कुछ मिल रहा है?
2: नहीं भाई हम लोगों को तो नहीं मिलता है, राशन उशन सब नहीं मिलता है,
0: कार्ड की सुविधा नहीं है,
2: बिजली वगैरह अगर हम लोगों को नहीं मिलता है।
0: वृद्धा पेंशन योजना?
2: वृद्धा पेंशन हम लोगों के बूढ़ा कोई है ही नहीं
0: है।
2: हाँ माता जी थे तो गुजरिए गई।
0: खेती वाली जमीन है कि नहीं?
2: हाँ है खेती, थोड़ा
0: खेती वाली जमीन है, तो सरकार के तरफ से जो किसान सम्मान निधि योजना चलती है उसका लाभ लेते हैं? 2000 रुपए?
2: हम लोग नहीं लेते हैं उसका, हम लोग नहीं।
0: स्वच्छता के मामले में कैसा है आपका मोहल्ला?
2: ठीक है, कुछ मतलब जहाँ तक तो ठीक है, रोज सफाई होता है, झाड़ू पोछा लगवे करता है सब, जो आता है नगर पालिका से सुबह समापन करता है।
0: जी धन्यवाद। श्रोताओं आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, इनका परिचय जानते हैं, क्या नाम है?
3: हमारा जहीर अंसारी नाम है।
0: आप तो नेकरा के रहने वाले?
3: नेकरा ही के रहने वाले।
0: आप करते क्या हैं?
3: ये मजदूरी करते हैं।
0: यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
3: खेती गृहस्थी मजदूर यही ज्यादा मिलेंगे।
0: तो अभी नेकरा की क्या स्थिति, क्योंकि अभी कुछ ही वर्षों नगर निगम में शामिल हुआ है, इससे पहले तो ये पंचायत क्षेत्र था, यहाँ खेती वाले भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, खेती भी करते होंगे, क्या स्थिति रहती है खेती?
3: पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन अब तो और खराब हो गई स्थिति। नहर का देखिएगा तो उस नाली का पानी नहीं जाएगा नहर में, इतना जाम है, उचितपुर से यहाँ तक मैं टूटा हुआ है, समझे कि पानी थोड़ा नहीं आ रहा है इधर, जो यही नहर था खाली मुहानी हम लोग छोड़ाने से पूरा सिवान डूब जाता था, लेकिन आज जाके देखिए कि बिया में पानी नहीं है,
0: पानी आने वाला बाहर

0: भरा चुका है?
1: हाँ, पूरा करा एकदम जाम है ये वाला। बरसात में समझ लीजिए हम लोग इंजन चला चला के जिया रहे हैं।
0: तो किसानों के लिए यहाँ पर पानी की समस्या?
1: हाँ, बहुत समस्या है। अभी जाके देखिए नहर पे हम लोग को मशीन लगा है।
0: देखिए अब तो ये नगर निगम क्षेत्र हो जाने के बाद बहुत से लोग मकान बना रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। इसके चलते भी पानी की समस्या होती जाती है।
1: इस वाला नहर पर उतना मकान कहाँ है, वो वाला नहर पर मकान ज्यादा है। तो मान लीजिए कराह जाम है, ये भी तो वही हाल हो गया है।
0: मतलब सफाई की कमी है?
1: हाँ, सफाई की कमी है।
0: कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ?
1: राशन मिलता है।
0: पेंशन योजना के लिए कोई घर में है क्या सदस्य?
1: हाँ, हमारे पिताजी है ना, उनका मिलता है बुढ़ा पेंशन, उनका किसानी पैसा मिलता है।
0: आयुष्मान कार्ड भी बनवाए होंगे आप?
1: आयुष्मान कार्ड बना है
0: जी। जी धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: सागर कुमार।
0: सागर जी क्या करते हैं?
2: खेतीबाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, किसान है, कृषि कार्य में लगे रहते हैं?
2: हम बीटेक इंजीनियर हैं।
0: अरे वाह,
2: इंजीनियरिंग छोड़ के खेती में है।
0: खुशी की बात है।
2: एग्रीकल्चर से संबंधित अपना व्यवसाय भी रखे हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इससे बढ़िया क्या है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अगर कृषि कार्य में जुड़े और इसका लाभ ले। अच्छा ये बताइए, आपका ये जो पहले गाँव था अब तो मोहल्ला हो गया है, अभी क्या विकास के मामले में यहाँ नाली गली बिजली की क्या स्थिति है?
2: देखिए विकास के मामले में पहले की अपेक्षा सुधार है, लेकिन उसमें कुछ कमी भी है। इस कमी को सुधारा जाए तो और बेटर होगा। जैसे में हो गया नली गली तो सर सफाई होता है, बट कुछ कुछ मोहल्लों में ही होता है, कुछ मोहल्ला वैसी रह जाता है। ये तो उनका जिम्मेवारी है जो इधर का ठेकेदार है।
0: आपने कहा कि आप कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं, बीटेक करने के बाद भी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं। प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते थे, लेकिन कैसे आप सोचे कि नहीं चलिए खेती में हम लगते हैं?
2: देखिए पहली बात कि नौकरी एक अलग चीज हो गया और अपना व्यवसाय अलग चीज हो गया। नौकरी में किसी का नौकर बन के रहना उससे बेटर है कि अपना खुद का धंधा करें। नौकरी में किसी को टाइम फ्रीडम नहीं मिल पाता है और ये अपना पर्सनल कार्य है।
0: अच्छा ये बताइए कृषि के लिए यहाँ क्या सुविधाएं हैं आपके निकट में?
2: देखिए कृषि के लिए हमारे यहाँ तो सुविधा ना के बराबर है। अब जैसे में किसान को क्या चाहिए, टाइम से पानी मिल जाए नहीं मिल पाता है, और उर्वरक भी टाइम से नहीं मिल पाता है, उसके लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। छोटा छोटा समस्या बड़ा समस्या बन जाता है।
0: अच्छा अभी जो स्थिति है फिलहाल में, जैसे आपने बताया नाली गली तो लगभग ठीक ही है, निकास की थोड़ी समस्या है,
2: अपेक्षा बहुत बढ़िया है।
0: पेयजल की यहाँ पर लोग समस्या बता रहे हैं।
2: पेयजल की समस्या देखिए पहले ठीक था, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग के वार्ड का टंकी जो है नल जल का टंकी, उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो हम लोग कंप्लेन भी दिए हैं। अगर हम लोग के यहाँ स्कूल पे कैंप लगा हुआ था, कैंप में भी दरखास्त लिख के दिए, बोला गया कि कर दिया जाएगा।
0: इसके चलते पानी की समस्या,
2: बहुत समस्या है। पानी तो लोग यहाँ चप्पाकल से बाल्टी में भर भर के घर पे ले जाता है, क्योंकि देखिए सब कोई पॉसिबल नहीं कि सबके घर में समरसेबल और सिलेंडर कल होगा।
0: अच्छा कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ आपको आपके परिवार के सदस्यों कुछ मिल रहा है?
2: देखिए सरकारी लाभ तो हम लोग को मिलता ही है, जैसे किसान सम्मान निधि है तो हमको नहीं मिलता है, बट हमारे घर में किसी न किसी को मिलता है, क्योंकि जिसके नाम से भूमि है उसी को मिलेगा, ये तो नियम है। गांव में और लोगों को भी मिलता है, जेन्युइन लाभ मिलता है,
0: मिलता है सबको। हाँ,
2: ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलता है, लाभ मिलता है।
0: आप युवा हैं और खास करके बीटेक करने के बाद खेती में लगे, आप अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहें जो पढ़ लिख करके केवल नौकरी के तलाश में पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए नौकरी के पीछे भागने वाला अगर हम अपने थिंकिंग से कहें तो बेकार है। नौकरी कीजिए लेकिन कुछ सीमित समय तक उसके पीछे समय दीजिए, क्योंकि हम एक नहीं तीन तीन जॉब छोड़ दिए हैं। हमको लगा कि नहीं नौकरी में हमारा कोई वैसा कुछ नहीं है, उसमें पैसा कमा सकते हैं लेकिन अपना जो टाइम फ्रीडम है वो हमको नहीं मिल पाएगा। देखिए नौकरी 100 में 100 लोगों को तो कभी संभव होगा नहीं, अगर टाइम रहते पर हम सोच जाएं संभल जाएं तो अपना बिजनेस कभी भी हम कर सकते हैं।
0: जी धन्यवाद। श्रोताओं आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला नेकरा के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला नेकरा में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisassaram@gmail.com। श्रोताओं समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी

जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी हमारे श्रोता कार्यक्रम विकास के सोपान सुन रहे थे। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। इसका पहला गाना सुनते हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में। महेंद्र मिश्र ने इस गीत को लिखा है, भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है। एल्बम है आधी आधी रतिया के।

मुन्ना सिंह के गाए इसी पारंपरिक गीत के साथ है कार्यक्रम लोक माधुरी यहीं समाप्त होता है। करी हम कौन बहाना एल्बम से आपने गीत सुना, बीएन सिंह के संगीत में किया हुआ। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। इसका पहला गाना सुनेंगे मुन्ना सिंह के ही आवाज़ में। दीप मोहम्मदाबादी लिखे हैं इस गीत को और दुर्गा प्रसाद ने संगीत दिए हैं। एल्बम है निमिया के दाढ़ मैया।

कार्यक्रम प्रस्तार की अगली और आखिरी पेशकश सूरज मिश्रा व्यास की आवाज में। शशिकांत तिवारी ने इस गीत को लिखा है, नीलेश चौरसिया ने संगीत दिया है, एल्बम है कहमा बाड़े ए पिधाता।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: अभी आप सुन रहे थे सूरज मिश्रा ब्यास के आवाज़ में खूबसूरत सा भोजपुरी गीत कार्यक्रम रसधार में। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम लोक माधुरी, इसके अंतर्गत सुनते हैं कुछ भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले मदन राय की आवाज़ में सुनते हैं एक गीत भोलानाथ गहमरी के लिखे हुए, भरत शर्मा ब्यास ने संगीत दिया है। एल्बम है बलम गईले झरिया।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश सर्वानंद ठाकुर की आवाज़ में। इस पारंपरिक गीत को सर्वानंद ठाकुर ने ही संगीत दिया है। एल्बम है करी हम कौन बहाना।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत प्रेम सांगर सिंह की आवाज में, करी हम कौन बहाना एल्बम से। इस पारंपरिक गीत को मदन शर्मा और दिलीप सिंह ने संगीत दिया है। ये सुनते हैं प्रेम सागर सिंह की आवाज में एक और खूबसूरत सा गीत।

प्रेम सागर सिंह गए इसी भोजपुरी लोकगीतों के साथ कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11:25 हुए हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों को थोड़ी देर में।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। यह फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। तो जाए जाए कर तार, तो जाए जाए कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक

ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी, इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे जो।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ बेदर्दे क्यों तड़पाए जी राम रग जाए के, ओ निर्दर्दे मैं पछताए तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज।

फिल्म संगीत की दुनिया में, और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है।

0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: आपके साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, अभिलाषा फिल्म के स्कीट में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा इस कार्यक्रम का, ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आगले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत। गुलशन मावरा ने इसे लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है, यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता, पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते, कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया, कभी धूप तो कभी उछैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीज़ें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों के खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हम सफर बन गए और जैसे पति पत्नी कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले, कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी। उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है वाकई जो चीज़ें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है, ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताज़ा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे। और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती जरूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारमा छूटता है, साथी, संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते, नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवर चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती हैं कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थीं, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है?

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़े दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियां, क्योंकि आमतौर पर सखियां तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा वो, किस्सा क्या है हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं

चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तेज रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था, पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टेक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं, मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन के इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए, कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते जमाने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और उसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफर गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी बारात कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रस्ते, जहां एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कहने के सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो संगीत हो राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में एक एक पंक्ति में एक एक गीत में, आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है, जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र यार दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं आज के प्रोग्राम में, बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी कि जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजिए, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी ऐसी बातें जिन्होंने आपसे जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। यही हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कहीं कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफर की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नजर आती है, लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफर की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहां आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफर की पोस्ट नजर आ जाएगी और आप वहां कमेंट के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहां पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मजा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त जरूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के जमाने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयां लीजिए, आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगे हम कहते हैं। और आपकी दोस्त का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई, और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे

होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले, और मिले तो वो किस्सा क्या है, और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफ़र। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है।

लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी एक और साथी कहती है कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतर तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में, इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का, कह रही कि सब कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं, सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है, लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं, समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वही हमारे एक और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते कि मैंने आपको भी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जहां याराना वो खूबसूरत रिश्ता है जहां शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज में है।

0: तो कभी छा,
1: कभी धूप कभी छांव। कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त का संगीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीत किसके आवाज में गीत हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं मारिक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर नयन जीवंत हो तुम, अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है, हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूं, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहां उसमें जो पंक्तियां होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़े वाला था वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियाँ और दोस्त भी, सुरीला सफ़र के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा, तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं वो उन्हें सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फ़ोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फ़ोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फोन आना। वही हमारे साथी कह रहे कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत जीवन के अनवरत सफर की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं, लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं मालिक साथी कह रही कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियां आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने जमाने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फोन उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में। कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं, हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहां पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहां मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे एक साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में, और वहां उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहां पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ, फिर हम वहां से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए, और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से

ले हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है। सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है। भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहां पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की। बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त किसी 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई और हमने पुरानी बातें की। तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें, यादें ताज़ा की होंगी। तो चलिए एक याद ताज़ा कीजिए इस गीत के साथ और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

किया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना, और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40 45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गांव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था, तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया, और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो भी होने लगा, उनकी बहस होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी

सचिन देव बर्मन की आवाज़ में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें। और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर के चयनित पंचायत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थीं। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में भी कई स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में NIC के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां एडिशन होगा। प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल

0: ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम दफ्तर और वजारत इत्तला नशरियात के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा नशरिया होगा। मन की बात प्रोग्राम का नशरिया प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके फौरी बाद मैथिली जुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी नशरिये को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मरकजी वजीर देही तरक्यात शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में कौमी देही तरक्यात कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। 2 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में बिहार समेत सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खितों के देही तरक्यात के वज़रा, सीनियर अफसरान और माहरीन हमा जहत देही तरक्की के मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अहम प्रोजेक्टों का जायजा और देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मरकज और रियासत मिलकर गांव की तरक्की की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। मरकजी वजीर सेहत और खानदानी फलाह जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में सेहत के शोबे से वाबिस्ता कई डिजिटल पहल का आगाज करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रोत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और हेल्थ स्टैंडर्ड शामिल है। इनका मकसद मुल्क में डिजिटल सेहत खिदमात की तौसी करना और सेहत खिदमात को मजीद मुअसर और आसान बनाना है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल रियासत के मुख्तलिफ मराकज पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा। 993 ओहदों के लिए होने वाला ये इम्तहान 2 नशिस्तों में होगा। मशरकी वस्त रेलवे इस इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज और कल 13 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाएगा। दानापुर डिवीज़न की जानिब से आज पटना के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुकूमत बिहार की पहल पर महकमा पंचायती राज की जानिब से अब हर महीने के आखिरी इतवार को रियासत के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। इस पहल का मकसद है देही तरक्की से जुड़े मौजूदात पर अवामी हिस्सेदारी को बढ़ाना और मंसूबों के जायजे के जरिए पंचायत को मुस्तकम बनाना है। वजीर आला सम्राट चौधरी इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज यौम हेलेन केलर है। हर साल 27 जून को हेलेन केलर की पैदाइश की याद में ये दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर पैदाइश से ही माजूर थीं। देखने और सुनने की कुव्वत नहीं होने के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में पुख्ता अज़्म दिखाया और अपना निशाना हासिल किया। इस मौके पर रियासत में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बिहार नेत्रहीन परिषद की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान रुकन कानून साज कौंसिल सर्वेश कुमार और रुकन असम्बली संजय गुप्ता मौजूद रहेंगे। इस बीच कल हेलेन केलर जयंती के कबल की शाम पटना में परिषद और BIA के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के लिए ज़ाती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 25 बासलाहियत माजूर अफराद को इजाज़ से नवाजा गया। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले में कुछ मुकामात पर आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रोहतास, कैमूर, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत रियासत के शुमाल मगरब और जनूब मगरबी हिस्सों में भी कई मकामात पर आंधी बारिश का इम्कान है। इधर महकमा ने मधेपुरा, पूर्णिया और सिवान ज़िले के 1-2 मकामात पर शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया
3: ऑल इंडिया रेडियो।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी में BE या BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bsnl.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक

0: एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर

0: रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
0: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that the contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी

0: परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: प्यार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविधारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से। एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शे के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती?
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो?
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो।
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की

0: इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी, दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब, विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती?
0: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गाँव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: मेरी विवशता है उमा, हमारे गाँव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो, गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गाँव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जस्ता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ आप

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस दादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?

0: गांव का यही दस्तूर है। आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे?
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
0: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
2: डॉक्टर साहब मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
2: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
0: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
0: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
0: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
0: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
0: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है। नई उमंग है ना? मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा, तो ये बात है।
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
3: सुना आपने?
4: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
3: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
4: भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
4: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
4: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी? मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
4: पानी, थोड़ा पानी, पानी। ओह, पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है।
4: अम्मा,
1: मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
1: देख लो,
0: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो?
1: अरे भाई, पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
0: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो?
1: ये लो, उतर आई तुम्हारी धरा पर।
0: अरे ए उमा, भैया अट्टहास कैसा?
1: हद्दे भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह, ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई?
2: जानम्मा जी, ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा। अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल

0: नहीं कि तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर।
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
2: जानम्मा जी ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चली जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
1: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
2: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
2: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
1: अच्छा अच्छा,
2: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
2: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
2: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
2: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
2: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
2: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था। मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
2: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
2: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
2: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
2: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
2: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
2: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
2: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
2: ओह अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
2: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
2: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
1: अरे अरे ये तो बेहोश हो गई, हाय इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
2: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो,
1: चलो चलो
2: बांगर, वो बस ले आ जल्दी से।
3: बेटी इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
2: मामा जी मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
3: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
2: मुझे किसी का डर नहीं है।
3: बेटी कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
2: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है, वह दूसरी है कि वह देर में खुलती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
3: लगता है इसके साथ
2: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
3: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
2: मामा जी आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
3: अब ठीक हूँ बेटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
2: मामा जी अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
3: भारती तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
2: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
3: सुनने में तो सब अच्छा है पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
2: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
3: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
2: काश मैं मर्द होती। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखती हूँ कौन है।
3: रात के 10 बज चुके हैं।
4: डॉक्टर अम्मा,
2: अरे नागमणि तुम, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
4: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
2: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
4: आपके बैल पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
2: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
3: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
4: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
2: जल्दी चलो।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब हैं, आपको हर बात में मजाक सूझता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब,

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो?
2: आ?
0: अरे कोई है?
3: अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे। अरे भागो भागो।

0: छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
1: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय

0: करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973 में,
0: ये
1: 1973 में आप
0: 1973 में,
1: हरियाणा से मुंबई आ गए।
0: नहीं मैं हरियाणा से दिल्ली में था,
1: हाँ
0: दिल्ली से मुंबई आया।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी,
1: जी।
0: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी,
1: अच्छा।
0: उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आप।
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था,
1: अच्छा।
0: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता,
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा।
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ कुछ हो गया
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा।
0: भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई
0: ओपनिंग
1: आपकी।
0: हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी,
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता है,
1: किसी ने कहा था।
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहां आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का,
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे, पूरा
1: अच्छा।
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
1: कोई पैसा नहीं
0: नहीं
1: देते थे।
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला,
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: यही
1: रहे,
0: काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: था।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था, अब
1: हाँ
0: वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, और मैं उनके साथ गया, और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए,
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब।
1: महबूबा।

0: माता पिता से बात होती रही क्या, उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत
1: परेशानी
0: नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच
1: दो
0: ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे,
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी

0: पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी बिट्टी गुम सुना है क्या?
1: बिल्कुल
0: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
1: अच्छा
0: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
1: अच्छा
0: ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बंबई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो
1: भी
0: जाते।
1: ऊर्जा आ जाती थी, एक
0: हाँ, लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे क्यों
1: कौन
0: नहीं,
1: देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता है,
1: प्रति ना, इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते
1: हैं।
0: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा
0: उनके जैसा, हो सकता है
1: जी।
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना
0: जी
1: हसरत
0: जी
1: साहब
0: जी
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने
1: इतने
0: के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
1: जी, जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई
0: अच्छा।
1: थी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते

0: थे। और कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था, और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले,
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए, और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और
0: उनका
1: लेजेंड से थे वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना है
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहां सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने
0: वो
1: वहीं
0: तो
1: से सीखा।
0: वाला थे किशोर
1: बहुत
0: कुमार
1: बहुत। और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहाँ जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी?
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था, विजय त्यागी।
0: विजय त्यागी,
1: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया। और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी, मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं, क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
0: अरे क्या बात है
1: और उसी में उन्होंने की।
0: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही था?
1: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था। और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा?
1: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
0: क्या बात है ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते
1: इस
0: हैं।
1: गीत ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
0: अच्छा।
1: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ।
0: हाँ।
1: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब, जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
0: अच्छा।
1: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे

0: उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा
0: हाँ, और कि लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या।
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी जी
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: अब
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी।
0: पहली फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी कि उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके।
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
1: हाँ
0: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।
1: बढ़िया।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला
1: सुंदर
0: है
1: इसमें,
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इसका।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग
0: बहुत
1: में डाली,
0: बारीक काम था
1: बहुत
0: ये,
1: बारीक
0: बारीक
1: काम
0: काम था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे
1: देखिए
0: श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: हाँ हाँ
1: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत खूब
1: ओढ़ली पैंतरा था।
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
1: जी जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से ये गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
0: कुमार
1: वो,
0: सानू के
1: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
0: जी।
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की, उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता

0: के घर जाना है।
1: हम्म,
0: तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला।
0: गया।
1: जी
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई। अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी।
1: हम्म,
0: तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है, लेकिन अभी तो क्या है, मैं थोड़ी बिजी हूँ, ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी, और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया, वहाँ से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए। तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला।
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा,
0: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती।
1: गा पाएंगी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी,
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते
1: है, बहुत सुंदर।

0: कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी, मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही जब दूसरा गाना हमको मिला, तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ।
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
0: जी
1: भले बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा, तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
0: हाँ अच्छा
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: थकते थे।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ
2: हाँ,
1: आए, वो क्यों आए
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा।
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े ना लाएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूं कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूं।
1: जी, ये सबसे
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं
1: जी
2: ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी।
1: अच्छा
2: और दादी गाएगी भी।
1: अच्छा
2: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
1: हाँ,
2: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही बात
2: मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि
1: बिल्कुल
2: मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी जी
2: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात है।
2: और उनको बुलाया। गाना वाला लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा
2: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है या सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं, और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
1: जी,
2: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में। और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी,
2: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी,
2: यहां तक तो दादी गाती है, अब लड़का क्या जवाब दे। दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
2: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा,

0: तो वो आपका माइंड जो है ना, वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ।
1: जी,
0: गीत
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

0: आएगी, साढ़े नाल आएगी तो साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी, साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व

0: वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल के ईएएम परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और ज्वेसास जोस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहा, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है

रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं मनोज तिवारी और साथियों की आवाज़ों से। विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ललन सिन्हा ने। फिल्म का नाम है दामाद जी।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं शराबी फिल्म का एक गीत कुमार सानू की आवाज़ में। श्याम देहाती के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लाल सिन्हा ने।

0: पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
0: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

अपन भइल पराया फिल्म के इस गाने के साथ ही सर्वेश मिश्रा और सुमित्रा व्यास गायक कलाकार थे। एमडी प्यासा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी संतोष सुमन ने। और अब आइए हम आपको सुनवाएं लाडली फिल्म का एक गीत पामेला जैन की आवाज़ में। अनीता बिहारी हैं गीतकार और संगीतकार हैं सुनील छैला बिहारी।

औरत नहीं खिलौना इस फिल्म के गाने के साथ ही भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा श्रोताओं आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में आप स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का भी। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व 2026 के अवसर पर दिनांक 27/6/2026 को विधि व्यवस्था संधारण हेतु मरकजी मुहर्रम कमेटी, अनुज्ञप्तिधारी ताजिया अखाड़ा एवं नगर पूजा समिति के साथ एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक रोहतास सहित वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मरकजी मुहर्रम कमेटी, अनुज्ञप्तिधारी ताजिया अखाड़ा के खलीफाओं एवं नगर पूजा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए की गई। उन्होंने उन सभी अनुज्ञप्तिधारी खलीफाओं का सराहना की जिन्होंने प्रशासन द्वारा निर्धारित समय एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करते हुए समय पर ताजिया का पहलाम किया।

दिनांक 26/6/2026 को कैमूर जिला के मोहनिया थाना अंतर्गत एस्टुअरगंज बाजार में मुहर्रम जुलूस के दौरान जुलूस में कई लोग शामिल हुए और हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम मनाया गया।

बैठक में प्रशासनिक अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और पर्व के दौरान शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे का वातावरण बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए गए। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत गीत।

अभी आप सुन रहे थे मजदूर फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। हसन कमाल के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर डी वर्मन ने।

इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: OTT app now and watch for free.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
1: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
0: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
1: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
0: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
1: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर जिले के टेटिया बंबर पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। आज एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर देश भर में लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को एमएसएमई के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि आज भारत को विश्व के चौथा आर्थिक व्यवस्था में लाने में कामयाब हुए हैं जापान को पछाड़ करके, और वो चाहते हैं, उनका कल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनाएं, ये उनका स्वप्न है।
0: श्री मांझी ने कहा कि देश का एमएसएमई सेक्टर लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 38 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
1: अन्य विभाग की बात नहीं कहता, हम अपने विभाग की बात करते हैं। जो अभी आपने सुना कि आज एमएसएमई की जो इकाइयां हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात, जिसकी बात कही गई कि 38

0: करोड़ लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से नियोजन दिया, यह स्पष्ट है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना के बीरचंद पटेल स्थित शहीद देवीपद स्मारक मिलर हाई स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने आज विद्यालय का दौरा किया और अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय राज्य के सभी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय बनेगा। राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि अपार आईडी के बिना परीक्षा के लिए निबंधन नहीं कराया जा सकेगा। गौरतलब है कि अपार आईडी छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाता है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्राचार्य की गंभीर लापरवाही की जांच उच्च स्तरीय समिति करेगी। श्री कुमार ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
2: जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाए। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या अनुपस्थित रहेंगे बिना बताए, तो उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकेगी।
1: गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
3: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
1: श्री पासवान ने मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर आज जिले का दौरा किया। इस दौरान बगचपरा में गंगा नदी में डूबने से मृत युवतियों के परिजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से आपदा राहत राशि 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 विशेष परीक्षा ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून का विस्तार हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सीवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मधेपुरा के पुरौनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, पटना, पूर्णिया और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से इस दौरान बाहर न निकलें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा केवल एक बार का प्रयास नहीं बल्कि सतत दायित्व है। राज्यपाल ने लोक भवन में आज राज्य स्तरीय अग्नि सुरक्षा तैयारी सेमिनार में फायर सेफ्टी डिक्लेरेशन का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। राज्यपाल श्री हसनैन ने कहा कि आगजनी की घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को प्रभावी तैयारी और जागरूकता के माध्यम से

देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इधर कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी मुहर्रम के ताजिया जुलूस का पहलाम किया जा रहा है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर की मस्जिद इलाके में स्थित दरगाह में आज दूसरे दिन भी विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए ताजिया का पहलाम जारी है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहानाबाद की जिलाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने आज जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, इसे किसानों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए। अररिया जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत नारा लेखन, निबंधन लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने तामगंज मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इन पर छात्रों से विद्यालय अवधि में कीटनाशक का छिड़काव कराने का आरोप है। वहीं नाथनगर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। रोहतास जिला भाजपा इकाई की ओर से समीक्षा बैठक की गई। पार्टी प्रदेश महामंत्री अभिषेक नितिन ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया है। सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सीवान जिले के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रज्ञा प्रवाह की ओर से भारत बोध सांस्कृतिक अवधारणा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के तौर पर रामाशीष सिंह, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी समेत अन्य ने अपने विचार रखे। शिवहर जिले के विभिन्न अंचलों में आज भूमि विवाद निष्पादन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं जिले के आरएस थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो युवकों को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट

0: एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
1: मधुबनी जिले में मोहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडाधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। जुलूस मार्गों पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। राज्य सरकार ने राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें मधुबनी जिला को भी सांझा विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिली है। विश्वविद्यालय की मंजूरी मिलने पर सांझा विश्वविद्यालय के फाउंडर सह सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सह विधायक आसिफ अहमद और विश्वविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर तौसीफ अहमद ने मुख्यमंत्री समाज चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। इधर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बीते दिनों मधुबनी जिला मुख्यालय में आधुनिक अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19,73,26,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 620 दर्शकों क्षमता वाले इस आधुनिक ऑडिटोरियम एवं संस्कृति परिसर का निर्माण भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्रकरण के आधार पर कराया जाएगा। जिले में पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिले में वर्तमान में 5,79,123 पेंशनधारी हैं, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब तक 4,71,318 पेंशनधारियों ने अपना प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 1,17,800 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण शेष है। जिला अधिकारी अनंत शर्मा ने पेंशनधारकों से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारकों को वर्ष में एक बार अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा समाज के 3 वर्ग वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगों को प्रत्येक माह 1100 रुपया पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिला अधिकारी ने कहा कि जो पेंशनधारी जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं, उनको पेंशन भुगतान मार्च 2026 से विभाग द्वारा रोक दिया जाएगा। वहीं जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहयोग शिविर पोर्टल पर अब तक कुल 8,799 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 88% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान

0: प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त भारत सप्ताह के अवसर पर उत्कर्णित मध्य विद्यालय पंडौल में बच्चों के बीच नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव के विषय पर पेंटिंग और निबंधन लेखन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:50 हुए हैं। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो दोस्त विनोद लेकर हाजिर हैं आप सभी का चहेता कार्यक्रम हेलो मनपसंद। श्रोताओं फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: हेलो, ये रघुवर पासवान खाखरा से बोल रहे हैं।
0: रघुवर पासवान
1: जी।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: खाखरा से।
0: खाखरा से, ये खाखरा किधर पड़ता है रघुवर जी?
1: जी,
0: जी जी, आप तो पास ही के श्रोता हैं, तो कम से कम मैं चाहूंगा कि आप पत्र के माध्यम से भी हमसे रूबरू होते रहिए। जो फरमाइशी कार्यक्रम है पसंद आपकी, उसमें पत्र भी भेजा कीजिए ताकि हम लोग को भी आपके पूरा परिवार को नाम लेने में थोड़ा सा गर्व महसूस हो और ले सके गर्व से। तो आगे से हम चाहेंगे कि पत्र के माध्यम से भी अपने गाने को सुनते रहें। आज ने फोन किया है, आपका फोन भी लग चुका है, आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मोहम्मद रफी, बहुत तुम याद आए।
0: बहुत तुम याद आए,
1: मोहम्मद अजीज क्या है?
0: ठीक है, आपकी फरमाइशें जरूर पूरी की जाएगी। तो लीजिए, सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत।
2: तेरे

0: हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच में हाजिर है। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में हम बज रहे हैं। जी हाँ, युवा साथियों के लिए, उनके करियर के लिए माता पिता से भी बातचीत हो रही है और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा

0: संस्थान जो पिछले 27 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ BCA और BBA के कोर्स को लेकर लगा है, एक अच्छा शिक्षण संस्थान आर्केड बिजनेस कॉलेज। आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। साथियों, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और टेक्निकल पढ़ाई करके ही आप अपने करियर में आगे की ओर जा सकते हैं, ऊंचाइयां दे सकते हैं। अगर आप BCA और BBA की सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे तो एक बार सोचिएगा, विचारिएगा कि BCA और BBA की पढ़ाई आपके लिए कितना जरूरी और लाभदायक हो सकती है। और अगर आपने सोचा तो जरूर डायल कीजिएगा आर्केड बिजनेस कॉलेज के इस नंबर पर। नंबर है 7520800, यानी 7520800800। आर्केड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष आदर्श जी से लगातार जी हाँ, दो एपिसोड से बातचीत चल रही है। आर्केड बिजनेस कॉलेज के विषय में एक चीज और बता दें कि ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त BCA और BBA के लिए एकमात्र संस्थान है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
0: और अब आइए चलते हैं, आशीष जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और कुछ सवाल है हमारे पास, हम सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे और ढेर सारी बातें होंगी आपके करियर के लिए, क्योंकि ये करियर काउंसलर भी हैं। आशीष जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में। और हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं, और वो ये है कि BCA और BBA या कोई भी कोर्सेज अगर करने स्टूडेंट जाते हैं ना, तो संस्थान का चुनाव कैसे करें? क्योंकि आज बहुत ज्यादा चकाचौंध है, इतने ज्यादा संस्थान हैं, तो इसमें संस्थान का चुनाव बहुत मायने रखता है।
4: देखिए, एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसे स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली। नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने BCA किया या BBA किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात मैं करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं। लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में। और बाकी अभी कंपनियां, 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम, परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट 3 की, रिजल्ट भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
0: एंड फैकल्टी, टीचर्स?
4: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज़ देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहाँ जाकर रिव्यूज़ देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज़ देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
0: बहुत खूब आशीष जी, आपने एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता दिया, और ये भी ऑनेस्टी के साथ कहा कि हर संस्थान जो है बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन देता है, और 2-3 चीजों को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एंड ऑफ द डे जो रोजगार की बात होती है कि पढ़ने के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपने खुलकर बातें की हैं एकदम साफ साफ। यही चीजें मुझे पसंद हैं। इसके

0: अलावा टीचर्स को आपने संस्थान की आत्मा कहा, जो 100% सही है। खुले मन से, खुले दिमाग से बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के करियर का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। बीसी और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है। टेक्निकल पढ़ाई अगर हम जानना चाहें ना, तो बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत वाइब्रेंट है, रोजगार भी मिल जाता है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जिन्होंने 27 वर्षों से बीसी और बीबीए की पढ़ाई जारी रखी है और आज एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आर्केड बिजनेस कॉलेज। हम नंबर दे रहे हैं, जरूर बात कर लेंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। और कोई सोचिएगा नहीं, विचारिएगा नहीं, एक फोन कॉल जरूर बनता है आपके अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। और नंबर है 7520800800। आशीष जी, हम दूसरे संस्थानों पर बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कुछ बुरा लग सकता है, एक जनरल बातचीत हो रही है। और हमने आर्केड बिजनेस कॉलेज को हाँ इसके सेंटर में रखा है क्योंकि एडमिशन ले ना ले, लेकिन सही जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने जो सफर 27 साल पहले बीसी और बीबीए को लेकर शुरू किया, लेकिन अभी तो एकदम बंच ऑफ कोर्सेज हैं आपके पास, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, एडमिशन हो ना हो ये बाद की बात आती है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि कोई भी इस तरीके के कोर्सेज में जाने से पहले 7520800 नंबर है, जरूर फोन करके बात कर लेंगे। बहरहाल बताइए अपने कॉलेजेस, अपने इस तरीके के टेक्निकल कोर्सेज के बारे में।
1: देखिए, आर्केड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस हैं, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़, और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहाँ पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहाँ चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं। और ये हमने 2025 से शुरू किया है, और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि सारी जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब हमारी फुल हो रही हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में छात्र आ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि जब हमारे पास एमबीए एमसीए की व्यवस्था है यहाँ पे, अब वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, हमारे यहाँ जो है छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खुद आराम से हम सारा प्रोसेसिंग करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको करेंगे, तो हम तो सभी स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि भाई तुमको कोर्स करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम्हारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सारा कुछ हम तुमको समझाएंगे, समझा करके सारा प्रोसेसिंग तुम्हारा करा करके तुमको हम पेपर दे देंगे। तो सारी चीज़ें उसके बाद से फिर एक दो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, जा करके एक जगह फॉर्म जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जितनी भी सारा गाइडेंस हमारी तरफ से होगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी इन सुविधा के दौरान के साथ साथ में आप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना कोर्स हमारे यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
0: कितना कितना चेंजेज आया है बच्चों के टेम्परामेंट।
1: देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी है, तो छात्र कभी भी आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपके आपके साथ रहेगा। तो स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट सही है, अगर आप अपने काम में ठीक हैं, अगर आप अपने कॉलेज में अच्छे से बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उनको आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको सारा, आज आपको बताऊं कि बिहार का शायद ये एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब कभी हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, कभी किसी को, वेबसाइट पे आप जाके देखिए, आपको दुनिया भर की चीजें, एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी।
0: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है, लगातार हम आते हैं हर एक साल इसी समय और इस रेडियो कार्यक्रम उड़ान के माध्यम से अपने युवा साथियों को जानकारियां देते हैं टेक्निकल पढ़ाई की, खास करके बीसीए और बीबीए के बारे में। और ऐसी स्थिति में हम गार्जियन से भी कहते हैं, हमारे बड़ों, आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ज़रूर इससे कुछ आपको भी पता चल रहा होगा कि संस्थान के अंदर जहां आपके बच्चे पढ़ने जाएं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए जो उनके अपने करियर में उन्हें ऊँचाइयाँ देगा। आप भी फोन कर सकते हैं, खुलकर फोन कीजिए, सवाल पूछिए, जो भी आपके अंदर में है ना सवाल, उसको पूछ डालिए, आफ्टर ऑल आपके बच्चों का सवाल है। और नंबर है 7520800800। अब जैसे हम इसमें बताते हैं कि स्थायी मान्यता प्राप्त, हाँ, किसी को टेम्प्रोरी मान्यता भी दे दी जाती है, किसी को 2 साल 4 साल इस तरीके से भी होता है, लेकिन संस्थान यदि

0: स्थायी मान्यता प्राप्त है ना, तो कहीं से कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। और आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
0: आशीष जी, अब एक सवाल ऐसा जिस पर बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं ऑलमोस्ट पूरे बिहार से, कि गांव के रहने वाले हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल या अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमजोर है, हमें झिझक है, हम शहर में आके वैसे बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इसके विषय में बताइए कि आप कहाँ डिफरेंट हैं दूसरों से।
4: देखिए, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, गांव के लड़कों बच्चों के साथ में एक ही डिमेरिट है, वो है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा पुअर है। वो ना अंग्रेजी ढंग से बोल पाते हैं, ना हिंदी ढंग से बोल पाते हैं, और उसके अलावा स्किल्स की कमी नहीं है। आप आज देखिए ना, जितने भी टॉपर्स हैं सब गांव देहात के स्कूल्स के निकलते हैं, कहाँ टैलेंट पे कमी है। तो मैं समझता हूँ कि उस सभी स्टूडेंट्स को हमारे पास आना चाहिए। मैंने जैसा भी आपको बताया कि हम लोग शुरू में जो भी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके लिए एक स्पेशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कराते हैं, जो उसको अटेंड करना पड़ता है, जिसके बाद वो लड़का स्मार्ट हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें वो उसके दिमाग से निकल जाती है, जो एक जो टैबू जो है काफ़ी दिमाग में जो चीज़ें मतलब भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती है, और अपने आप को वो अपने आप 3 महीने के बाद खुद को उसको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या तब्दीली हुई। जो बच्चा आपको मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला सकता हूँ अपने यहाँ से, जो जिसको एक लाइन बोलना नहीं आता था, डरता था बोलने में, आज वो स्टेज पर खड़ा होकर के परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम बेहतर से बेहतर वहाँ पर वर्कशॉप कराएंगे, जिससे उन बच्चों के अंदर का जो झिझक है वो ख़त्म होगी। क्योंकि झिझक अगर करके कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको निश्चित तौर पर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और उसमें हम उसकी पूरी मदद करेंगे।
0: जवाब मिल गया जिन लोगों ने भी फोन कॉल करके पूछा था उड़ान में कि हमारा क्या होगा। अरे आशीष जी ने कहा, आप किसी से कम नहीं हैं, बस चंद दिनों के बाद आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मित्रों। BCA और BBA बहुत ही उम्दा कोर्स है, और उतना ही उम्दा है आर्केड बिजनेस कॉलेज। आप एडमिशन लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फोन करके जरूर बात कीजिएगा, जानकारियां लीजिएगा, जिससे इंस्टीट्यूशन को चुनने में आपको मदद मिल सके। नंबर है 7520-800-800। जी हाँ आशीष जी, चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा?
4: ये जो समय है, दो समय में से कोई एक समय चुनना है, या तो अभी 5 साल की मेहनत पूरे जीवन भर का आराम, या अभी 5 साल का आराम पूरे जीवन भर कशमकश। चुनना आपको यही है, और स्टूडेंट्स को भी अपने लिए स्वार्थी हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और ये 5 साल वो अपना पूरा फोकस करे अपने पढ़ाई में और अपने करियर को बनाने में।
0: थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, एकदम सेल्फिश हो जाना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड। 5 साल या जो भी साल अभी के हैं उसमें खूब मेहनत और भविष्य निर्माण की बातें होनी चाहिए। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, BCA और BBA बहुत ही उम्दा कोर्स है, इसमें आगे चल के आप MBA और MCA करके अपने करियर को और सजा सकते हैं। फिलहाल उड़ान कार्यक्रम का लक्ष्य है सही चीजें आप तक पहुंचाना। हम सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे जिससे कि आपको आधार मिल सके, जानकारियां मिल सके, उड़ान कार्यक्रम इसीलिए आता है। बहरहाल आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नंबर बताना चाहेंगे जहां से आप जानकारियां ले सकें, 7520-800-800, 7520-800-800। फोन कीजिएगा, जानकारियां लीजिए, सवाल पूछिए, और करियर में आगे बढ़ जाइए। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे हेलो मनपसंद प्रोग्राम का शेष भाग।

0: प्रणाम।
1: गढ़मुखा से राजकुमार
0: राजकुमार
1: बोल रहे।
0: जी, राजकुमार जी बोलिए, क्या हाल चाल है?
1: सब ठीक है सर।
0: गर्मी को कैसे झेल पा रहे हैं?
1: गर्मी काम करना ही है, बाहर निकलना ही है। हम
0: वैसे आप करते क्या हैं राजकुमार जी? आप करते क्या हैं?
1: राजमिस्त्री का काम करते हैं।
0: राजमिस्त्री का? अब इस समय तो बहुत काम करने में गर्मी पड़ रही होगी।
1: मॉर्निंग काम होता है।
0: जी
1: हाँ
0: जी काम में तो बहुत कठिनाई आती होगी, फिर भी चलिए पेट जो कराए।
1: हाँ
0: तो आज आपने फोन किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, अतरिया पर लोटन कबूतर रे।
0: चढ़ गया ऊपर रे।
1: जी सर।
0: फिल्म का नाम बता सकते हैं क्या?
1: दलाल फिल्म का
0: जी
1: शायद
0: जी
1: होगा।
0: जी राज बब्बर का दलाल फिल्म का एक गीत है। जी
1: जी हम
0: जी
1: नाम लेना चाहते हैं कुछ दोस्तों का, घर
0: जी
1: का।
0: जी जी जी
1: प्रिंस कुमार,
0: जी,
1: नेहा कुमारी, देवंती कुमारी।
0: जी और हमसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े तो हैं ही तभी आप फोन किए हैं, तो आज आपकी फरमाइशी जरूर पूरी की जाएगी। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद
0: जी, स्वागत है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र।
1: जी
0: कौन साहब बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नासिर हुसैन वाहिद, राजस्थान।
0: अच्छा, नासिर हुसैन जी
1: सर,
0: राजस्थान से।
1: बॉर्डर पर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर पर है।
0: अच्छा, वहाँ तो रहने में बहुत कठिनाई होती होगी।
1: बहुत सर दिक्कत है, इस समय तो समझिए कि पानी लाना पड़ता है 3 किलोमीटर दूर से।
0: वहाँ का मौसम कैसा है आजकल?
1: आजकल तो अभी तो कुछ बारिश हुई थी, लेकिन बारिश थोड़ा ही बहुत हुई थी और ज्यादा उमस टाइप का हो गया है सर।
0: तो वहाँ तो हमारे ऐप के माध्यम से आप रेडियो सुन रहे होंगे, सिग्नल साफ सुथरा मिलता है वहाँ?
1: जी सिग्नल तो बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है,
0: जी,
1: और पहले तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन अब ये बॉर्डर ऊपर जो लगा दिया गया है कटेला तार से, जो घेराबंदी हो गया है बॉर्डर का ना,
0: जी जी
1: तो उसके चलते प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पुलिस चौकी सब है, वहाँ पर सच लाइट रात भी चलता रहता है, रात के समय में करंट भी उसमें दौड़ता रहता है, इसलिए जंगली जानवर भी उधर से नहीं आता है इधर, और इधर से भी कोई नहीं आता जाता है।
0: अच्छा नासिर जी, आज फोन किया है आपने, आपका फोन भी लग गया है, कभी फोन तो नहीं लगता होगा, व्यस्त रहता होगा हमेशा, तो आज आपने क्या सुनना चाहा है?
1: मुझे सुना दीजिए, गौतम गोविंद फिल्म का गाना है दरोगा जी चोरी
0: चोरी हो गई। लीजिए अपने मनपसंद का यह गीत सुनिए।
2: दरोगा जी

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, हम सुनील बोल रहे हैं।
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं आप सुनील जी?
1: प्रणाम कर रहे हैं सर, हम मुंगावा ग्राम से बोल रहे हैं, दाऊद नगर थाना में पड़ता है।
0: जी जी दाऊद नगर
1: जी।
0: अंछा का नाम सुने हैं दाऊद नगर थाना में?
1: जी जी।
0: अच्छा,
1: अंछा हम लोग को दाऊद नगर से 7 किलोमीटर दक्षिण पड़ता है,
0: जी जी
1: पश्चिम।
0: तो आप रेडियो सासाराम में पत्र भी भेजा कीजिए।
1: जी जी, पहले भेजते थे सर,
0: काहे बंद कर दिए? तो पत्र के माध्यम से रूबरू होते रहिए ताकि आपके पूरे परिवार का हम लोग नाम ले सकें, ताकि सारे परिवार को भी सुनने में अच्छा लगे। खैर कोई बात नहीं, आपने फोन किया है, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दीवाना फिल्म का पायलिया शोर मचाए।
0: अच्छा, पायलिया शोर मचाए आपको दीवाना का?
1: जी जी
0: जी, लीजिए सुनिए अपने मन पसंद का यह गाना।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो मनपसंद।
0: जी, बोला जाए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं नवीनगर प्रखंड से बोल रहा हूँ, औरंगाबाद जिला से।
0: जी,
1: गांव का नाम काला पहाड़ है।
0: काला पहाड़। जी,
1: ये मैं सुनना चाहता हूँ, कौन दिशा में चला रे बटोहिया।
0: जरूर सुनाया जाएगा। ऐसे तो ये भी भोजपुरी है, मगर ये शामिल की जा सकती है, हिंदी फिल्म में ही चलता है। कौन दिशा में लेके चला रहे, नदिया के पार फिल्म का ये गीत है।
1: जी।
0: हाँ, तो इसको सुनाए जाएंगे आपको, जरूर आपकी ख्वाहिशें इसमें पूरी की जाएगी। तो लीजिए, सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत फिल्म नदिया के पार से।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं सदाबहार रेडियो श्रोता ताजपुर मोरवा से
0: मोरवा से? जी
1: समस्तीपुर से
0: जी
1: भाई कारी राय कारी बोल रहा हूँ।
0: हाँ, मीना कारी राय कारी।
1: जी, आप
0: जी
1: बिजल बाबू बोल रहे हैं
0: जी
1: क्या? विशेष मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।
0: जी जी धन्यवाद, फोन लगाया आपने, आपका कॉल भी लग गया।
1: जी,
0: तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आज हमको सुरक्षा में याद किसी की आती है फिल्म के नाम है, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज
0: जी,
1: है।
0: जब याद किसी की आती है।
1: जी, ढूंढे तुझको नए दीवाने, आजा आजा रे।
0: ढूंढे तुझको मैं दीवाने, आजा आजा रे, बहुत अच्छा पसंद है आपका, और फिल्म भी काफी पुरानी है।
1: अच्छा,
0: तो लीजिए, सुनिए अपने मन पसंद का यह गीत।

इसी गाने के साथ आपका चहेता कार्यक्रम हेलो मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बता दें कि प्रत्येक बुधवार अपराह्न के 11 बजे से 12 बजे के बीच की जाती है। आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है कि जिन श्रोताओं का फोन इस सप्ताह लगे हुए हैं या जिन श्रोताओं से बात हो गई है, कृपया कर अगले सप्ताह आप फोन न करें, ताकि और ज्यादा श्रोताओं से बात करने की मौका मिल सके और श्रोताओं की भी फरमाइशें पूरी की जा सके। धन्यवाद।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मनपसंद। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के

आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र

0: लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जिस साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे।

0: उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अवधेश कुमार को। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक।

इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुआ चाहते हैं। पेशे खिदमत है गजल का प्रोग्राम महफिल। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई गज़ल, खुशबू एल्बम से हम जिसे चुने हैं। तो आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

हरिहरन की गाई इसी गज़ल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी

आदि जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

0: पर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुने पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना तेरे

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ, एक दिन शम्मी कपूर

ऊर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम, जरा धुने सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचा

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून, गुलजार के लिए जो बनाई थी, वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई? लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ

उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मिया, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

वाह खुदा एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे कुणाल की आवाज़ में। मनीष अग्निभोज के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी ओम कुमार कुणाल ने।

तस्वीर उनकी मेरे दिल में उतर गई, एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ों में। और अब आइए रसरंग कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी के सासाराम केंद्र। रसरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे तुझे भूलना तो चाहा एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग। जुबिन नौटियाल की आवाज़ में मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी रोचक कोहली ने। और अब आइए हम आपको सुनवाएं तुमसे ही लव वॉल्यूम 2 एल्बम का एक गीत। मोहित चौहान की आवाज़ है, इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

तुमसे ही लव एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। और अब आइए रसरंग कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये गीत।

रसरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं तुलसी को। तुलसी कुमार को आगे भी सुनेंगे, इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

जंजीर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। चित्रपट तराने कार्यक्रम में श्रोता दोस्तों आइए अब सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का एक गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अभिमान फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी एसडी वर्मन ने। और अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं बनारसी बाबू फिल्म से एक गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

बनारसी बाबू फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब आइए चित्रपट तराने कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बॉबी फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब आइए चित्रपट तराने कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बॉबी फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी का ये सासारण केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को

0: उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between